0: हेलो।
1: हेलो।
0: गिवाना या
1: कोई हिला मुसी ना
0: मुसीना इलांग इलांग बस आई पांच कप पोयानी जदी तो पांच एक तो सगुना से चेंको